0: avez transmis de la musique par la pensée.
1: Aimez-vous ça?
0: C'est merveilleux.
2: स्वात्मसुखावबोधे निःश्रेयसे जाञ्जलिकायमाने संसारहालाल मोहशान्ति
3: Solenoid Radio Show.
4: Solenoid Radio Show.
0: Solenoid.